0: इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।
1: जिस दर पे सभी एक है।
0: सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरि हरन के आवास में सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अगला भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज जबकि शनिवार का दिन है तो ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में पेश किया

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में महेंद्र कपूर के आवास में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। पंडित जयशंकर जी की आवाज में चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं।

भजन बस पर वे पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी प्रसून मुखर्जी की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए प्रसूत मुखर्जी की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए विपिन सचदेव की आवाज में ये सुंदर सा भजन पेश की गई है। चले प्रोग्राम में सुरेश वत्कर की आवाज में श्री हनुमान चालीसा पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर और सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।
1: आर्त व्यक्ति ही भगवान की शरण में जाते हैं, आर्त की पुकार ही आरती है। आरती अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए की जाती है। पूजा में भूल से या प्रमादवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। 1, 5, 7 आदि विषम संख्या के दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। इष्ट देव की प्रतिमा के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार और नीचे से ऊपर तक 7 बार आरती घुमानी चाहिए।

प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन एक बार फिर से, और आप सभी सुनने वालों को एक बड़ी ही खूबसूरत और सुहाना वीकेंड बस पेश किया जा रहा है। और आज भी गर्मी सा मौसम होने वाले हैं। वैसे बाहर आप देखेंगे तो कहीं कहीं धुआं धुआं सा है, यानी कि मिस्ट है, लेकिन जल्द से जल्द धूप भी दिखाई देगा और आज का दिन भी गर्मी सा मौसम होने वाले हैं। तो यहां से हम आपको ले चलेंगे गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर। उसे सुनने वालों है जो इस प्रोग्राम को रोजाना सुनते हैं, इंतजार भी करते हैं, और वो भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी या चाय के साथ। तो चले पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, शनिवार का दिन 11 तारीख जुलाई, सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, सभी को शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड, एनन हेग खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, देश विदेश में भी हम देख रहे हैं, बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम भी सुनते हैं। आप सभी सुनने वालों को भी स्वागत किया जा रहा है। स्टूडियो की ओर तार करना है या तो ऐप करना है तो तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 0322 66 66 11, या तो अपना मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल फोन, टैबलेट पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर, और उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल कर सकते हैं, और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। और खास बात ये रहा कि उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए हमारा ये प्रोग्राम पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं।

0: इश्क़ की आवाज में गाना उस प्रोग्राम में पेश किया गया, जब याद किसी की आती है फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में किशोर एन लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम महाचोर।
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: मैंने नहीं सुना, जरा जोर से कहो।

लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। लता मंगेशकर एक बार फिर से आज के प्रोग्राम में, अब की बार हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्म महल की ओर। महल फिल्म का नाम 1949 तक का फिल्म।

महल का गीत पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की ओर। और अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम दो रास्ते, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611।

फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। अब आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना मेहदी हसन और मेहनास प्रोग्राम में होगा। एक पाकिस्तानी मूवी का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम बहन भाई। फिल्म बहन भाई मेहदी हसन और

भेजती गए, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गए। आशा भोसले एन लता मंगेशकर की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं 1962 का फिल्म का गीत की ओर। फिल्म का नाम प्रोफेसर

गाना जो पेश की गए आशा भोसले और खासतौर पर लता मंगेशकर की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम प्रोफेसर, उसी ये फिल्म का गीत भी आपने सुना, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश प्रोग्राम।

द माइटी मुकेश की आवाज में गाना बस पेश की गई फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम। रेडियो SBS के जरिए ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। एक नॉन फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में रफी साहब की आवाज में पेश किया जा रहा है।

परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में स्वर्गीय हेमंत कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।

स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर की ओर हम आपको ले चलते हैं, जिंदगी और मौत फिल्म का नाम।

जिंदगी और मौत फिल्म का नाम। सुन वालो, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656066। लता मंगेशकर

0: लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए प्यार का सपना फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। शनिचर शनिवार का दिन 11 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है ठीक 12 बजे अफसोस के साथ मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt

रेडियो SBS के जरिए दमाईती मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई अनारी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई एक सुनने वालों की खासतौर पर मांगी हुई गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई गाना को सुनना चाहती थी आज के प्रोग्राम में तो इसी तरह से पेश की गई रेडियो SBS के जरिए 10:00 प्रोग्राम में 8 मिनट व्यतीत हो चुका है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। चलिए गाना मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है गोरी चलो ना हंस की चाल जमाना दुश्मन है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और खासतौर पर आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर, उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों, जिस तरह से आप सभी सुनने वालों को खबर किया गया है कि ठीक 12 का वक्त, ठीक 12 बजे अफसोस के साथ मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज शनिवार है और आपको खबर किया जा रहा है कि सुपरमार्केटों को दवा के पास में जबरदस्त आन बीडिंग रखा गया है। खासतौर पर फेड्स सूरीनाम से खुरुंत, यहाँ पर जो आपको सस्ती दामों में दिया जा रहा है, जरूर आप जाकर खरीदिए। फेड्स कौश बांत यहाँ पर अंदर आया है, टायर ब्लॉक, हाँ सब के सब यहाँ पर फेड्स अंदर आया है, जरूर आप जाकर खरीदिए। सस्ती दामों में आपको दिया जा रहा है और वो भी सुपरमार्केटों को दवा के जरिए। प्रिंस बैठना प्लाइन नंबर 4 और 5 तक उतरेख जॉयलन में है और आपको मालूम होना चाहिए कि हर रविवार दुकान भी खुला रहता है सुबह 11 बजे से लेकर के और शाम 6 बजे तक। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। आपकी बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। आपकी बार फिल्म भाभी का गीत पेश होगा।

एक बड़ी ही सुंदर और खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। भाभी फिल्म का नाम था, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों है जो स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं और खास तौर पर ऐप द्वारा भी तार कर रहे हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं, तार करके अपना अपना रिएक्शंस देते हैं, कुछ बातें भी होते हैं और हंसी मजाक भी होते रहते हैं तार पर। चले प्रोग्राम में गीता दत्त की ओर हम आपको ले चलते हैं, लेकिन गाना पेश करने से पहले सुनने वालों आपको भी खबर किया जा रहा है, कल रविवार है, कल इतवार है, कल सुबह 11 बजे से बस प्रोग्राम में फरमाई से आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। मतलब होते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम में फरमाई से होगा रेडियो एसबीएस का खास प्रोग्राम में, और वो भी कल सुबह 11 बजे से। ऐ दिल बता दे, ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, होगा रेडियो एसबीएस का खास प्रोग्राम में, और वो भी कल सुबह 11 बजे से। ऐ दिल बता दे, ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। गीता दत्त

भाई भाई फिल्म का नाम गीता दत्त की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। Utrecht, Thames Drive 237 से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए अपना मोटरकार में अपना घरों में आप हॉलैंड देश के बीच में मेडन नीदरलैंड और दूर दूर आसपास के शहरों में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी दूर दूर शहरों में और आसपास के शहरों में ये प्रोग्राम आप डे या बे प्लस रेडियो के जरिए भी सुन सकते हैं। अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में ये प्रोग्राम जो सुन

Dita Hem. गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा लता जी की आवाज में, एक काफी पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। 1962 का फिल्म 20 साल बाद, उसी फिल्म का ये गाना है।

ये फिल्म 20 साल बाद उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आने वाले सप्ताह से आप जाकर अपना रक्षाबंधन, अपना रक्षाबंधन जो है मुस्कुराता के पास आप खरीद सकते हैं। हजारों हजारों रक्षाबंधन यहाँ दुकान के अंदर भी बस होगा आप सभी के लिए। इसलिए कि शुक्रवार 28 तारीख अगस्त, फ्राइडे 28 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है, तो अपना रक्षाबंधन, अपना राखी जो है जरूर आप जाकर खरीदिए। आने वाले मंगलवार से मुस्कुराता दुकान के पास जो डेनहाग शहर के अंदर में है, कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर सस्ती दामों में एक से एक खूबसूरत रक्षाबंधन आपको दिया जाएगी। मुस्कुराता डेनहाग शहर के अंदर में है, हॉलैंड देश के अंदर सबसे बड़ा दुकान होते हैं जहां पर इंडिया भारत देश का कपड़े गहने, दुल्हा दुल्हन के लिए कपड़े और तरह तरह की सामान यहां पर आपको सस्ती दामों में दिया जा रहा है। मुस्कुराता.nl वेबसाइट पर आपको सभी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। आने वाले मंगलवार से जरूर यहां पर आप तशरीफ फरमाइए अपना रक्षाबंधन के लिए, अपना राखी के लिए जो आपको सस्ती दामों में दिया जाएगी। एक से एक खूबसूरत रक्षाबंधन यहां पर आपको दिया जाएगी। सर है 10 का वक्त है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले फिल्म धरती की ओर हम आपको ले चलते हैं। 1970 का फिल्म, 1974 का फिल्म है। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा।

धरती का गीत पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शनिवार का दिन 11 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बाहर की ओर आप देखेंगे तो बादल छाए हुआ मौसम है, कहीं कहीं धुआं धुआं सा है, यानी कि मिस्ट भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धूप भी दिखाई देगा और आज काफी गर्मी सा मौसम होने वाले है। देर तक ही न देर तक खराब बस होने वाले है, गर्मी सा मौसम, धूप ही धूप का मौसम होने वाले है। ऐसे इस वक्त से आज बाहर आप देखेंगे तो बादल छाए हुआ मौसम दिखाई देगा, लेकिन घबराइए मत, धूप का मौसम आने वाले है और गर्मी सा मौसम भी है। एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराये, 1960 का फिल्म। एक गाना जो पेश किया जा रहा है इसी फिल्म का, लता जी की आवाज में, अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म।

जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म दिल अपना और परी पराए, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार 1952 की ओर, 1952 की ओर। उसी साल में फिल्म जाल रिलीज किया गया और उसी फिल्म में स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना लाया गया है।

ये सब गाने रात्रि की वक्त में भी सुनना चाहिए, लेकिन कभी कभी सुबह की वक्त भी अच्छा लगता है ये सब गाना सुनने में। तो इसी तरह से हेमंत कुमार, स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म जाल का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए आप मेल और radio.sbs का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं, और उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए। लता जी की आवाज में एक बड़ी ही खूबसूरत गाना लता मंगेशकर प्रोग्राम में। 13 मिनट बाकी है 11 बजे में, 13 मिनट 4:11।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है और रिक्लाम के जरिए भी आपको खबर किया जा रहा है कि इस साल मिलन जो है साइड पार्क डेनहाग शहर के अंदर में द क्रोड्स मिलन द एयर्स द एंड क्रोड्स द मिलन जो हर साल साइड पार्क डेनहाग शहर में होते हैं इस साल फॉर द 42वीं केर होगा 21, 22 एंड 23 अगस्तस। अब हर एक को खबर किया जा रहा है कि फ्राइडे 21 अगस्तस लाइव फ्रॉम त्रिनिदाद पूरा म्यूजिक ग्रुप लेकर के डीले नादान म्यूजिक ग्रुप लेकर के मशहूर गाने वाला रेमोंड रामनारायण स्टेज पर रहेंगे पोडियम पर रहेंगे फ्राइडे 21 अगस्तस और वो भी मिलन साइड पार्क डेनहाग में। सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है मिलन समर फेस्टिवल .nl और क्राम फॉर और अपना टिकट के लिए इसी वेबसाइट पर आप जाइए मिलन समर फेस्टिवल .nl। लेकिन मत भूलना अपना अजेंडा में नोट कीजिए 21, 22 और 23 अगस्त मिलन समर फेस्टिवल होगा इस साल डेनहाग साइड पार्क में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत सुरेश वत्कर और लता जी की आवाज में गाना पेश होगा दिल आखिर दिल है। हाँ, दिल आखिर दिल है जब से देखा है तुम्हें सुरेश वत्कर एंड लता।

0: तरफ से देखा है तुम्हें, सुरेश भटकर और लता जी की आवाज में, फिल्म दिल आखिर दिल है, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आज की ये पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का आखिरी गाना। कल रविवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम सुबह के वक्त जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हर सुबह ये प्रोग्राम पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार और आपका दख हॉरोस्कोप होता है। जावेद अली प्रोग्राम में

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की प्रोग्राम में।

दिल जो ना कह सका फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। चले गाना अतीफ असलम की आवाज में पेश किया जा रहा है बदलापुर।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार कुमार सानू और अलका जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

दास्तानों और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे जो अब की बार पेश किया जा रहा है उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में।

श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS की जरिए खास गान अब इस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज शनिचर शनिवार का दिन है, 11 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम सभी दोपहर की ओर जा रहे हैं, मेरठ की ओर। तो आप सभी सुनने वालों को अनहेल खुद मेरठ शुभ दोपहर पेश किया जा रहा है। चले गाना और होगा, उसके बाद प्रोग्राम में खबरें होगा, रिक्लाम, न्यूज, मौसमी समाचार और फरकेर से इन्फॉर्मेशन। उसके बाद तुरंत प्रोग्राम में मृत्यु समाचार पेश किया जाएगी। मृत्यु समाचार अभी
1: जिंदगी का
0: प्रोग्राम में पेश किया जाएगी रेडियो SBS की जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला। ए दुनिया के मालिक, तूने कौन सा खेल खेला। सुनने वालों, रेडियो SBS के जरिए यहां से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर पुकारा जा रहा है। आप लोगों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है गौर से सुनने के लिए। उत्तराखंड ओवरवेग लिसनस्टाइन ड्रेव नंबर 23 नंबर 23 से समस्त लड़कन राम खेलावन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि गत रविवार 5 तारीख जुलाई 58 साल की आयु में स्वर्गीय लोचे राम खेलावन की पत्नी सरिता, रेशमी, माया, अजय और सूरज के मां प्रकाश, शारदा और लक्ष्को के सास विशाल, रानी और किरण के नानी शिवानी के ननिया सास इलाइना, इलाइशा और इफानो की आजी जिलानी फीना, रायन, वियाइशा और इनाया के पर नानी। उत्तराखंड ओवरवेग लिसनस्टाइन ड्राइव नंबर 23 नंबर 23 की रहने वाली सीता राम खेलावन, सीता राम खेलावन की मृत्यु हो गई है। अर्थी सोमवार 13 तारीख जुलाई मांडा 13 जुली ओम 12 uur क्रेमेटोरियम डोमस्टेड प्रोस्ट वेटरिंग नंबर 8 उत्तराखंड लेइडसे रैन में दाह संस्कार किया जाएगी। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार दुख की खबर जो पेश की गई है।

सुन वालों यहां से ये प्रोग्राम भी एक शोक समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। गत रविवार 5 तारीख जुलाई 78 साल 78 साल की आयु में यूट्रेख्त ओवरवेग लिसनस्टाइन ड्रेव नंबर 23 की रहने वाली माता श्री सीता राम खेलावन की मृत्यु हो गई है। अर्थी आने वाले सोमवार 13 तारीख जुलाई मानदाह 13 जुलाई दिन में 12 के वक्त ओम 12 क्रेमेटोरियम डोम स्टेड प्रोस्ट वेटरिंग नंबर 8 यूट्रेख्त लेइडसे रैन में दाह संस्कार किया जाएगी। यूट्रेख्त शहर से समस्त दुखित लड़कन राम खेलावन यानी कि शरिता रेशमी माया अजय और सूरज अपने प्यारी प्यारी माँ प्रकाश शारदा और लक्ष्को अपने सास विशाल रानी और किरण अपने प्यारी प्यारी नानी इलाइना इलाइशा और इफानो अपने प्यारी प्यारी आजी गिलानी फीना रायन व्याइशा और इनायम अपने पर नानी की याद में और उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए ये गाना को पेश कर रहे हैं कि चिट्ठी ना कोई संदेश

चिट्ठी न कोई संदेश। गाना पर सुख समाचार जो प्रोग्राम में पेश किए गए गत रविवार 5 तारीख जुलाई सोंदाग 5 जुली 78 साल 78 साल की आयु में उत्रेख ओवरवेग लिसनस्टाइन ड्राइव नंबर 23 23 की रहने वाली माता श्री सीता राम खेलावन की मृत्यु हो गई है। अर्थी आने वाली सोमवार 13 तारीख जुलाई मानदाह 13 जुली दिन में 12 के वक्त ओम 12 uur क्रेमेटोरियम डोमस्टेडे प्रोस्ट वेटरिंग नंबर 8 उत्रेख लेइडसे रेन में दाह संस्कार किया जाएगी। उत्रेख शहर से समस्त दुखित लड़कन राम खेलावन यानी कि शरिता रेशमी माया अजय और सूरज अपने प्यारी प्यारी माँ प्रकाश शारदा और लक्ष्को अपने प्यारी प्यारी सास विशाल रानी और किरण अपने प्यारी प्यारी नानी इलाइना इलाइशा और इफानो अपने प्यारी प्यारी आजे गिलानी फीना रायन व्याइशा और इनायम अपने पर नानी की याद में और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस पेश कर रहे थे चिट्ठी ना कोई संदेश। इसी तरह से प्रोग्राम में रेडियो SBS के जरिए एक शोक समाचार बस पेश की गई है। रेडियो SBS दुखित लड़कन राम खेलावन को और तमाम परिवार राम खेलावन को शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और इन दुखित परिवारों के लिए रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से दुखित लड़कन, दुखित परिवार राम खेलावन के लिए ये सुंदर और अति सुंदर भजन आज के ये प्रोग्राम में पेश की गए। यहां तक प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, शोक समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए। रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि आज शाम में ठीक 6 बजे फिर से मृत्यु समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। एडिसन मेडल्स 3:04 भी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि आज शाम में ठीक 6 बजे फिर से मृत्यु समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। एडिसन मेडल्स 3:04 1:30 स्टूडियो

हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है। कंतूर का टेलीफोन नंबर 03-265-65-60। हर एक इंफॉर्मेशन भी आप मेल द्वारा भी ले सकते हैं। अपना मोबाइल टेलीफोन पर जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। रेडियो SBS का तार का नंबर, मेल और रेडियो SBS का ऐप 24 पर दाग बराबर होता है। सुनवलो, हर शनिचर की तरह, हर शनिवार की तरह आज शनिवार भी आप सभी सुनवलो की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम बस यहां से आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले, पहला गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, उमर की आवाज में आप जरूर सुनते ही रहना।

और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 5:04 स्टूडियो टाइम चले प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए आज की इस खास लोकल टाइम का प्रोग्राम में। जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना ये गाना जो अबकी बार पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए उमर की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की ये गाना आप सभी ने सुना।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए रेडियो SBS के जरिए। शेर उत्रेख्ट टेम्स रेव 237 से ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है रेडियो SBS का, और सालों से सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। आने वाले महीना कोमंत मांत वर्त प्रसिस 41 यार, जबकि उत्तराखंड शहर के अंदर में रेडियो SBS का प्रोग्राम शुरू हुआ 41 यार हो जाएंगे कि रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में सविता सिंह किंग सेलेक्टा एंड

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको खबर किया, रिक्लाम आपने सुना कि इस साल मिलन जो होने वाले हैं, ईस्ट एंड क्रोस मिलन जो हर साल होते आए हैं साइड पार्क डेनहाग शहर के अंदर में, इस साल फॉर द ट्वेन फेयर तकस्तकेर होगा मिलन समर फेस्टिवल डेनहाग शहर के अंदर में। और आपको खबर किया जा रहा है कि 21, 22 एंड 23 अगस्त मिलन

Simon Ramdarijn. Live on stage Renge. Alleen vrijdag 21 augustus. Vrijdag 21 augustus. Milan Summer Festival mein. तो अपना टिकट जो है जरूर आप जाकर खरीदिए milansummerfestival.nl पर। तो चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं रेमोन रामनारायण।

Raymond, Ramnarayan Keyavans met je gaan naar Bisky. Vrijdag 21 augustus Milan Summer Festival met je Mashur Ganewala Johe. Live from Trinidad, live on stage Rahenge. Abhi abhi कुछ मिनट हुआ है कि स्टूडियो में एक सुनने वालों तार किया, आम्स्टल फेन शहर से तार किया है। आपके तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। और जहां तक आपने खबर किया है कि आपको ये सब गाने बहुत पसंद है,

रेडियो SBS की जरिए ये खास गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आसरो बीट है सुनकर और काफी पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त लोकल टाइम का प्रोग्राम को सुनते हैं और हम देख रहे हैं खबर भी किया है तार द्वारा राजन गिरधारी उत्तराखंड लाइट सराय गिरधारी स्त्रात से राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अबकी बार गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और पेश किया जा रहा है आज की प्रोग्राम में ये गाना।

दस मिनट बाकी है एक बजने में। गाना जो अभी आपने सुना, जानी चमन शोला बदन, और उसके बाद रात के हम सफर। सुनने वालों, सनी चर का दिन है, शनिवार है, वीकेंड है, 11 तारीख जुलाई, और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लाइव के जरिए। ये प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, हर इतवार रविवार 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक बैठक गाना प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और बैठक गाना प्रोग्राम में भी आप अपना गाना, अपना गीत को मांग कर सकते हैं। हर इतवार रविवार बैठक गाना हंगामा और मेर दन फिर तक यार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। हर रविवार सुनते ही रहना ग्लेन रंबाली के जरिए।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक और गाना इसी लोकल टाइम का खास प्रोग्राम में ये गाना

टाइम का प्रोग्राम में जो पेश की गए हैं हमारी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

करके अपना अपना रिएक्शंस देते हैं और लोकल टाइम का प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में एक और चटनी सॉन्ग आज की इस प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए रोजाना की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में है। आज रोमी थे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनवालू रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में विनेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है सुना।

रेडियो SBS के जरिए संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है यूट्रेक्ट से, हॉलैंड का सबसे खूबसूरत शहर से, यूट्रेक्ट शहर से, फनाउटेड मोस्ट स्टार्ट फॉर नीदरलैंड शहर यूट्रेक्ट से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में बॉयकर।

0: बॉयको की आवाज में अभी आपने सुना रूप तेरा मस्ताना। लोकल टाइम का प्रोग्राम रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।
1: Je luistert naar Mr. SBS op Radio SBS FM.

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। नीलम के बाद चले मिस्टर ऑल राइट की ओर गाना जो पेश किया जा रहा है, और गाना का बोल है पार्बो सहरिया मिस्टर ऑल राइट।

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS और आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सत्यम, अमरीश, नीलम और शेरोन की आवाज में ये गाना पेश की गई।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार अब आपको ले चलते हैं आज की इस लोकल टाइम की प्रोग्राम में। और इसी गाना के साथ मैं आप सभी सुनने वालों से इजाजत और आज्ञा चाहूंगा। आसरा उम्मीद है कि हमारा आज के लोकल टाइम का प्रोग्राम आपने सुना और बेहद पसंद किया है। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से फिर मिलूंगा। तो इसी गाना के साथ इजाजत और आज्ञा दीजिए। Have a nice weekend. शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। दित प्रार्थक लीजिए इस गजांग दो श्रेया घोषाल एंड कम आउट द फिल्म द बॉडी एंड हमने सुना है इस फोंट लीजिए विया रेडियो SBS आउट द फिल्म मेरे यार की शादी है गजांग दो उदित नारायण अलका याचिक सुदेश भोसले एंड जसविंदर ने रूला इस दित लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर।

गुर नालो इश्क मिठा इस द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एन गजोंग दोर लता मंगेशकर कम तो द फिल्म आरजू अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

मुझे रंग दे इसको समझो। आशा भोसले एंक वाम द फिल्म तक्षक एंड आउट द एल्बम दुनिया जिसे कहते हैं कम तो समझो। जगजीत सिंह कल 14वीं की रात थी।

वारा जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह मैथ। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्राख्त लीजिए सुसों दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो खुसों दो जगजीत सिंह एंड कॉम दे सिकेर आई द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

ये नयन दरे दरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों के लहर में अगला गाना फिल्म खामोशी से, वो शाम कुछ अजीब थी।

आपने सुना फिल्म पागलपंती से, और अब आप सुनिए अलका याचनिक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अलका याचने की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, अली असमत की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, मौला मौला।

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, kwam uit de prachtige film Dhadkan van Akshay Kumar, Shilpa Shetty en Sunil Shetty. Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we dan verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony Band ki khaas peshkash. Suniye.

0: uit de film Raju Chacha komt het volgende liedje in het programma Geetum Killeher via Radio SBS. Gezongen door Sean komt Tune Mujhe Pehchana Nahi.
1: Sanjana! Sanjana!
2: I'm sorry. मैंने आपको पहचाना नहीं.
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है. हाँ यही तो है सब निशानियां.

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। अज़ीज़ कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज़ से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला। ऐ दुनिया के मालिक, तूने कौन सा खेल खेला। सुन वालो रेडियो SBS के जरिए यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर पुकारा जा रहा है। आप लोगों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है गौर से सुनने के लिए। उत्तराखंड ओवरफेख लिसनस्टाइन ड्रेव नंबर 23 नंबर 23 से समस लड़कन राम खेलावन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि गत रविवार 5 तारीख जुलाई 58 तक साल की आयु में स्वर्गीय लोचे राम खेलावन के पत्नी सरिता, रेशमी, माया, अजय और सूरज के मां प्रकाश, शारदा और लक्ष्को के सास विशाल, रानी और किरण के नानी शिवानी के ननिया सास इलाइना, इलाइशा और इफानो की आजी जिलानी फीना, रायन, वियाइशा और इनाया के परनानी। उत्तराखंड ओवरफेख लिसनस्टाइन ड्रेव नंबर 23 नंबर 23 की रहने वाली सीता राम खेलावन की मृत्यु हो गई है। अर्थी सोमवार 13 तारीख जुलाई मांडाग 13 जुली ओम 12 उर क्रेमेटोरियम डोमस्टेड प्रोस्ट वेटरिंग नंबर 8 उत्तराखंड लेइडसे रैन में दाह संस्कार किया जाएगी। उत्तराखंड ओवरफेख से समस्त दुखित परिवार राम खेलावन तुअर और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि गत रविवार 5 तारीख जुलाई 58 साल की आयु में स्वर्गीय माधो राम खेलावन और श्रीमती एर तुअर की छुटकी, सभी लड़कन के काकी और ककिया सास, सभी लड़कन के नानी और ननिया सास, सभी लड़कन के पर नानी। उत्तराखंड ओवरफेख लिसनस्टाइन ड्रेव नंबर 23 नंबर 23 की रहने वाली सीता राम खेलावन की मृत्यु हो गई है। अर्थी सोमवार 13 तारीख जुलाई मांडाग 13 जुली ओम 12 उर क्रेमेटोरियम डोमस्टेड प्रोस्ट वेटरिंग नंबर 8 उत्तराखंड लेइडसे रैन में दाह संस्कार किया जाएगी। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में सुख सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार दुख की खबर जो पेश की गई है।

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गजों दो सोनू निगम है श्रेया घोषाल, बस और द फिल्म आजा नचले। And now the film An Evening in Paris comes with Sangha Do Sharda. Lecha, lecha, lecha, mera dil.

भी सरफिरा तू भी सरफिरीज, गजोंग दोर सिद्धार्थ माधव, नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम टू द फिल्म कट्टी पट्टी एंड आउट द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम द टाइटल सॉन्ग गजोंग दोर अलका याचनिक एंड सोनू निगम।

ऐ मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में, और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना। के की आवाज़ में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से, भीगी भीगी सी है रातें।

तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में, कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से क्या हुआ तुझे।